0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। ख़ुशख़बरी,
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125257 86
3: जी हाँ 2315257 86
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

मैं के मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजरसानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला की जाने वाले चले जाते हैं किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती छाओ में धूप की तरह जिस्म में रूह की तरह गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह तेरे बिना नहीं घर भी घर अकेले महसूस ये किया तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला तू है

0: की दवा मैं धूप में खड़ा महसूस।
1: उससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते।
2: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खदशा खत्म न थियण जी सूरत में वफाकी हुकूमत सां सहकार खत्म करण जी धमकी ॾेई छॾी। पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकली वारे फैसले जी आज या पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुखालिफ़ धुर जे अॻवाननि सां मुलाक़ात बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त इहो मुमकिन नाहे त असीं इतादी बेंचिस ते वेठा हुजूं ऐं असांखे कारकुननि जा लाश मिलनि। हुकूमत असां खां सवाइ कानून साज़ी करे सघे थी त करे ॾेखारे। खदशा ख़त्म न थियण ताईं कंहिं बि कानून साज़ीअ लाइ हुकूमत खे वोट न ॾींदासीं। अवां मुंहिंजे वालिद सदर साहब खे मंझराए सघो था त मंझराए वोट वठो। आज़ाद कश्मीर में धांधली थी, नून लीग खे तकरारी इलेक्शन घुर्जे त इहा ख़ैर मुबारक हुजे। हुकूमत ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे लाॻापन बाबति सवाल जे जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त लॻे थो त दाल में कुझु कारो ज़रूर आहे। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो नाहे चयो त पूरी दाल कारी आहे, दाल में जेको कारो आहे उहो कॾहिं फिटो कयो वेंदो। इतादियुनि में मसला पैदा थियण ते गॾिजी वेही हल कया वेंदा आहिनि। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जे बुनियाद ते पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो। अदालती फ़ैसिलो कंहिं सियासी अमल जो नतीजो नाहे। हुकूमती अपील ते ॿुधण खां पोइ वज़ाहत थींदी ऐं फ़ैसिले ते अमल बि थी वेंदो।
1: सिंध की बात आप कितने काले बैग पास हुए हैं सिंध असेंबली में। मैं अगर पंजाब का असेंबली का इज्जत कर रहा हूं, अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली गिलगित-बल्तिस्तान का इज्जत कर रहा हूं, तो अगर मैं तमाम सूबों के कारोबार को पार्लियामान के कारण एहतराम करूंगा तो मैं अपना सिंध का कारोबार का खिलाफ कोई फैसला कर सकता हूं। जानता हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बातें चल रही हैं।
2: नवनि सूबनि बाबति जेको फ़ैसिलो अवाम जो हूंदो इहो ई पीपल्स पार्टीअ जो हूंदो। जेसिताईं का असेंबली मुखालफ़त न कंदी त नवनि सूबनि बाबति मां कीअं एतिराज़ करे सघां थो। सिंध जी सूरत हाल ॾिसी वठो, उते सिंध असेंबली सूबनि ख़िलाफ़ केतिरा भेरा ठहराव मंज़ूर कया आहिनि। हींअर ताईं कंहिं तरमीम बाबति का शइ साम्हूं नाहे आई, उन ते कीअं ॻाल्हाए सघिजे थो। जिते इतफ़ाक़ राय मौजूदु हुजे उते फ़ैसिला इतफ़ाक़ राय सां कया वञनि। असां ज़ोर ज़बरदस्ती न कल्ह मञी हुई ऐं न ई हाणे तस्लीम कंदासीं। वफ़ाक़ी सरकार बानी पीडीआई खे जेल मां इस्लामाबाद जे शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण वारो फ़ैसिलो चैलेंज करे छॾियो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख़्वास्त दाख़िल। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त अदालत पूरे मरहले में समूरियूं सज़ाऊं जीअं जूं तीअं मंज़ूर करे केस जे बुनियादी मसइले खे ई ख़तम करे छॾियो, जेको सुप्रीम कोर्ट जे तय कयल असूलनि जे उबतड़ आहे। आईन जो आर्टिकल 25 बराबरी जो हक़ ॾिए थो कंहिं हिकु सज़ा याफ़्ता क़ैदीअ खे ख़ानगी अस्पताल में इलाज जी सहूलियत ॾियण या फ़ौजीदार इंसाफ़ जो समूरो निज़ाम मुतासिर थींदो। अदालत जे अहिड़े फ़ैसिले सां ॿियनि क़ैदियुनि लाइ बि अहिड़नि मुतालबनि जो दरवाज़ो खुली वेंदो। हुकुम जारी करण खां अॻु लाॻापियल धुरनि खे नोटिस बि न ॾिनो वियो। अदालती फ़ैसिलो इंसाफ़ जे असूलनि जे उबतड़ आहे, तंहिं करे हिन ते नज़रसानी कई। एतसादी राबता कमेटी 1,08,000 रिटर्न फंड एक्सपोर्ट करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी सदारत हेठि इजलास दौरान फंड जे एक्सपोर्ट लाइ आलमी टेंडर्स जारी करण जी पिण मंज़ूरी ॾिनी वई। नाणे वारे वज़ारत मौजूदु ट्रेडिंग कारपोरेशन वटि मौजूदु 1,08,000 टन फंड एक्सपोर्ट थींदी। फंड जे एक्सपोर्ट लाइ आलमी ट्रेडिंग PPRA कानून तहत कई वेंदी।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
4: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।
10: छा आवां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
11: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
11: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252578 6।
11: जी हाँ 3135525786।
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
11: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: क्या वहाँ पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
5: जी हा, 2315-2576।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे, त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गैर मामूली है ईरान के तबाही तरफ देखींदड़ मुआशी जंग जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो आहे त ईरान खे मुआहिदो करण जो मौको डि॒नो हो पर फ़ाइदो न वठी सघियो। हाणे ईरान ख़िलाफ़ अहिड़े तबाह कंदड़ मुआशी जंग तरफ़ वञूं पिया जेका अॻु कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ न कई वई आहे। तेल जी स्मगलिंग, तेल बरदार जहाज़नि रक़म जी मुंतकली, करेंसी एक्सचेंज मर्कज़नि जे इस्तेमाल ऐं फर्ज़ी कंपनियुनि जे नाले ते जहाज़नि जी रजिस्ट्रेशन जहिड़ा मामला मुआशी जंग जे निशाने ते हूंदा। ईरान जे परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकी जो फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां टेलीफोनिक राब्तो। खिते जी सूरतहाल, ईरान अमेरिका जंग जे ख़ात्मे ऐं गडि॒यल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ख़्यालनि जी डे॒-वठि कई वई। ईरानी मीडिया जो चवण आहे त खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे जे हवाले सां ऐं मामलनि ते मुशावरत कई वई ऐं मौजूदा सूरतहाल जो मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जाइज़ो वरितो वियो। तकरार जे निबेरे लाइ कोशिशूं जारी रखण ऐं वेझड़ाई वारा राब्ता बहाल रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। भारत में मुक़रर अमेरिकी सफ़ीर जे वलारियल कश्मीर जे हवाले सां तकरारी बयान ते पाकिस्तान जो सख़्त एहतजाज। अमेरिकी नाज़िम अलमूर खे परडे॒ही आफ़ीस तलब करे सख़्त एहतजाज रिकार्ड करायो वियो। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान जम्मू कश्मीर खे भारत जो हिसो करार डि॒यण वारे अमेरिकी सफ़ीर जो बयान रद्द करे थो। जम्मू कश्मीर आलमी तौर तस्लीम थियल तकरारी इलाइक़ो आहे। तकरार जो हतमी फ़ैसिलो गडि॒यल क़ौमनि जे ठहिरावनि ऐं

नवन सूबन बाबत जेको फैसलो आवाम जो हूंदो उहो ई पीपल्स पार्टीअ जो हूंदो। जेसि ताईं का असेंबली मुखालिफ़त न कंदी त नवनि सूबनि बाबति मां कीअं एतिराज़ करे सघां थो। सिंध जी सूरतहाल ॾिसी वठो, उते सिंध असेंबली सूबनि ख़िलाफ़ केतिरा भेरा ठहराउ मंज़ूर कया आहिनि। हींअर ताईं कंहिं तरमीम बाबति का शइ साम्हूं नाहे आई, उन ते कीअं ॻाल्हाए सघिजे थो। जिते इतफ़ाक़ राय मौजूद हुजे उते फ़ैसला इतफ़ाक़ राय सां कया वञनि। असां ज़ोर ज़बरदस्ती न कल मञी हुई ऐं न ई हाणे तस्लीम कंदासीं। इक़्तिसादी राबता कमेटी 1,08,000 मेट्रिक टन खंडु एक्सपोर्ट करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी सदारत हेठि ECC जे इजलास दौरान खंडु जे एक्सपोर्ट लाइ आलमी टेंडर्स जारी करण जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी वई। नाणे वारे वज़ारत मौजूदु ट्रेडिंग कार्पोरेशन वटि मौजूदु 1,08,000 टन खंडु एक्सपोर्ट थींदी। खंडु जी एक्सपोर्ट लाइ आलमी ट्रेडिंग PPRA कानून तहत कई वेंदी। हुकूमत पेट्रोल महांगो ऐं डीज़ल सस्तो करे छॾियो। डीज़ल जी क़ीमत में 32.63 रुपया फ़ी लीटर लाथ। पेट्रोल जी क़ीमत में 2.97 रुपया इज़ाफ़ो। क़ीमतनि में फेरफार बाद पेट्रोल जो फ़ी लीटर 337.51 रुपया लीटर थी वियो। डीज़ल जी नई क़ीमत 338.06 रुपया फ़ी लीटर मुक़ररु। पेट्रोलियम डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। नवां अघ 20 अगस्त लाइ लागू हूंदा। गढ़ी यासीन जे ॻोठु बाकरशाह में हथियारबंदनि जी फायरिंग। धनार नौजवान क़तल। हथियारबंदनि बकरियूं चाढ़ींदड़ 30 वरनि जे नादिर मारफाणीअ खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। नौजवान जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो। घर में रोज़ राड़ो।

0: ऐं गेड़ी खेरो में बेगारी कैनाल मां निकरंदड़ मुख़्तलिफ़ शाखनि जे आबादगारनि जो पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ धरणो। सिंध बलोचिस्तान दंग बेगारी पुल वटि धरणे सबबि ट्रैफ़िक मुअतल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। आबादगारनि पाक किताब खणी डाहींदे चयो त ताज़ा शाख, हीदन शाख, लुंद माइनर ऐं सेरवा गुज़िरियल 15 ॾींहनि खां पाणी न आहे, पाणी फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हय में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
7: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
4: जी हा 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पंगोर जे इलाइक़े कुली सुरान में गुझी इतलाह ते ऑपरेशन करे पंज दहशतगर्दनि खे जहन भेड़ो कयो। उहे दहशतगर्द मक़ामी माण्हुनि खां फुरलुट भते खोरनि टारगेट किलिंग ऐं आपघाती हमलनि में मुलविस हुआ।

पेट्रोलियम वारे वजीर अली परवेज मलिक चयो आहे त असांजी कोशिश सां रिफाइनरी ॻाल्हि मञी डीज़ल जी क़ीमत घटी वई आहे। IMF जे मुआदे खे ॾिसंदे पाकिस्तान जी तवानाई सिक्योरिटी बणाइण ताईं ज़रूरी आहे। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाइ बि जल्द मुआदो थींदो। तवानाई सेक्टर जे डी रेगुलेशन ते बि कम थी रहियो आहे। शाम जो परडेही वज़ीर ख़्वाजा असद हसन पाकिस्तान जे दौरे ते पहुची वियो। अॼु पाकिस्तानी इख़्तियारनि सां मुलाक़ात कंदो। असद हसन नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे दावत ते पाकिस्तान पहुतो आहे।

0: सिंध बलोचिस्तान रंग बेगारी पुल वट धरने सबब ट्रैफिक मुअत्तल थी वही गाड़ियों जो कतारू लगी वयू आबादगार पा किताब खड़ी दाहिंदे ताजा शाह कीदन शाह डोन माइनर ए सेरवा गुजरियल 15 डी पानी ना है पानी फराम पो वे
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असाजे बार पेरी पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रह
6: खुशखबरी साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत
7: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहो है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
7: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहो है।
6: उन का अलावा असा वट रिफल की सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद
7: अवां जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
6: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ए बिन तकरीबन लाए हाणी असा सा राबतो करियो असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
9: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
8: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230 कैश ए किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छितू लगरा लाए खुशखबरी छा चाहो था अवां जे घरन जो छितू पक्यू हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना

0: ॿुड़ी 310 31 43 842।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 331 525 786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आओ कि जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये एक सवाल है आपको मेरे साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है और वापस आ चुके हैं जी 12 बजे वाली ब्रेक के बाद, जिसके बाद हमारा सेगमेंट होता है दैट इज हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसके जानिब से आप ये सेगमेंट सुन रहे होते हैं. और आज काफी दिनों बाद हमारे साथ फिर से मौजूद हैं जी एहतसामुल हक. और एहतसामुल हक जो कि चाइना से हमें हमेशा की तरह लाइव ज्वाइन करते हैं और आज भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले हम एहतसाम को कहते हैं खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम.
0: जी एहतसाम,
1: मेरी आवाज
0: जी आवाज आपकी बिल्कुल सही आ रही है, आपको मेरी सही से आ रही है?
1: जी जी आपकी आवाज ठीक आ रही है.
0: ओके जी एहतसाम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं?

0: जी अल्लाह का शुक्र है और आई होप के तमाम हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे।
1: बिल्कुल।

0: गर्मी थी उसमें थोड़ी सी दिन की आ रही है। उम्मीद यह है कि शायद ये 31 अगस्त तक ऐसी जारी रहे और उसके बाद मौसम थोड़ा सा तब्दीली की तरफ जाए, जब ऑटम यहाँ शुरू होने लगेगा।
1: ओके जी, ग्रेट। अच्छा एहतिसाम, आज हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं?

कि हमने काफी बार बात की है कि बीजिंग में या खास तौर पर बीजिंग की भी हमने बात की और चीन में भी कि पिछले 10 सालों में जो तब्दीली हमने माहौल में देखी है, यानी आज से 10-12 बरस कबल जब लोग यहां आए थे, वो जब अब दोबारा आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये इतना साफ एनवायरनमेंट कैसे हो गया है, जो फजाई आलूदगी थी, हवा की ज्यादा होना, गर्द आलूद होना, डस्टी रहना, ये सब कैसे ठीक हो गया है। और जो इतना ज्यादा डस्टी होता था कि जो आसमान है आपका वो नजर नहीं आता था, नीला आसमान नहीं आता था, तो अब एक टर्म यहाँ यूज की जाती है ब्लू स्काई, कि अब आपको नीला आसमान साल के अक्सर दिनों में नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत सारी एफर्ट्स तो हुई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का कितना किरदार है, क्योंकि ये रिलेट यूं करता है रुखसार के हम अपने यहां भी जब बात करते हैं तो हम कोशिशों पर तो जरूर बात करते हैं कि देखें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अब दुनिया तब्दील हो गई है, दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए फवायद हासिल करने की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से जा रही है और उसके नतायज हमारे सामने आ रहे हैं। तो जहां ह्यूमन एफर्ट्स की बात हो रही है वहां टेक्नोलॉजी को खास तौर पर अब मस्नूई जहानत, जैसे हम AI कहते हैं, उसको कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी वाजे मिसाल हमारे सामने है, क्योंकि अब नीला आसमान कोई गैर मामूली मंजर नहीं रहा है। और मेरे ख्याल में बीजिंग की जो फजाई बेहतरी है उसकी सबसे दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि आलूदगी कम हुई है, बल्कि ये है कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी, आदाद और शुमार और कंटिन्यूस अगर मैं कहूँ मॉनिटरिंग, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें अब यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप सरकारी आदाद और शुमार की बात करें तो 2025 में बीजिंग में 311 दिन 365 में से हवा का मयार अच्छा या निस्बतन बेहतर रहा, जो साल के तकरीबन 85.2% बनता है। इसके बरक्स 2013 की जब मैं आपसे बात कर रहा था उसके स्टैट्स निकाले तो जो शदीद आलूदगी वाले दिनों की तादाद थी वो 58 थी, और वो जो तादाद 58 2013 में थी शदीद आलूदगी की, वो 2025 में सिर्फ एक दिन रही। सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसको हम शदीद आलूदा कह सकते हैं, यानी नॉर्मल तो आलूदगी रही लेकिन शदीद आलूदा जब वर्क फ्रॉम होम हो जाए, लोगों को मना किया जाए कि आप बाहर ना निकलें, डस्ट एलर्जी खास तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर करे। सबसे नुमाया तब्दीली वो PM2.5 में आई, और 2013 में इसकी औसत सालाना 89.5 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर थी, जो कि नापा जाता है कि आलूदगी कितनी है, तो वो 89.5 से 2025 में कम होकर सिर्फ 27 माइक्रोग्राम रह गई, यानी तकरीबन 70% की कमी हुई। तो ये आदाद व शुमार यकीनन ये सवाल करते हैं कि बीजिंग ने ये कामयाबी कैसे हासिल की, तो इसका एक जवाब जो है वो जदीद माहौलियाती निगरानी का निजाम है जो बीजिंग में इस वक्त राइज है। शहर में फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेशंस हैं उनकी बड़ी तादाद में वहां पर छोटे छोटे सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनसे हासिल होने वाला डेटा सिर्फ ये नहीं बताता कि हवा खराब है, बल्कि ये समझने में भी मदद देता है कि आलूदगी कहाँ से आ रही है और किस इलाके में ज्यादा है। यानी जो सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि हवा का मयार कैसा है, आलूदा है या नहीं है, अगर तो वो आलूदा है तो बताया जाएगा कि अच्छा ये आलूदगी कहाँ से आ रही है, यानी इसका सोर्स क्या है और किस इलाके में ज्यादा है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है बीजिंग की अगर हम बात करें। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का असल फायदा सामने आया। बीजिंग ने PM2.5 के जराए का कई मरतबा तज्जिया किया, और 2025 में जो जारी होने वाला चौथा तज्जिया था उसके मुताबिक अब बीजिंग की PM2.5 आलूदगी में जो इलाकाई मुंतकली का हिस्सा है वो 57% है, जबकि मकामी जराए

0: हिस्सा 43% है। यानी अगर अब बीजिंग में जो कि एक एक काफी हद तक कम हो गई है आलूदगी, उसको भी जांचा जाए तो 57% वो है जो दूसरी जगह से आ रही है, और जो खुद ये शहर आलूदगी पैदा कर रहा है वो 43% है उसका जो आलूदगी है, जो कि बहुत कम है। तो चीजें हैं, गाड़ियां हैं और उसके अलावा रिहायशी और रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक जो सोर्सेज होते हैं आपके, आग का जल जाना या दीगर चीजों का होना या कचरे का बाहर आ जाना, ये तमाम चीजें 18% है, जबकि जो इंडस्ट्रियल कहना चाहिए कि पोल्यूशन है वो तकरीबन 10-10% है। अब ये तब्दीली एक बड़ी अहम हकीकत की तरफ इशारा करती है, जब आलूदगी का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाए तो फिर बाकी मसला मजीद मुश्किल हो जाता है। यानी इसको हम यूं ही कहते हैं कि जब आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो बड़े बड़े जो सोर्सेज थे जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जिसमें गाड़ियों का फॉसिल फ्यूल पर होना था, उसको श्रिंक किया गया, इंडस्ट्रीज को जो है वो मूव किया गया, तो उन इलाकों की जानिब जहां आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है और जहां शहरी आबादी कम है। तो ये आपने बड़े बड़े काम तो कर लिए, लेकिन अब जब मामलात अब ये हैं कि आपको मजीद कम करना है तो जाहिर है कि फिर छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करना ये और डिमांडिंग हो जाता है। तो पहले बड़े सनती और कोयले के जराये जो थे उनको तो निस्बतन जब कम किया गया तो वो बड़ा वाजे था, उसको कम कर दिया, लेकिन अब बीजिंग में गाड़ियों के हवाले से, तामीरात के हवाले से, शहरी जिंदगी के हवाले से और फिर जो इसके इर्द गिर्द इलाके हैं वहां से जो आने वाली आलूदगी है उससे निमटना अब जो है वो मुश्किल है और उस पर काम किया जा रहा है। इसलिए अब सिर्फ दरख्त लगाना या फैक्ट्रियों की जो चिमनियां हैं उनको चेक करना काफी नहीं रहा। बीजिंग मस्तूई जहानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी मुख्तलिफ सेंसर्स को मिलाकर जो आप रिजल्ट हासिल करते हैं उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम कहते हैं, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट से आप जांचें, और फिर गाड़ियों पर नस्ल निगरानी का जो निजाम है उसको एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ इदारों से आने वाला डेटा जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जमा होता है जहां एल्गोरिथम्स जो हैं वो मुमकिन आलूदगी के खतरात की पहले ही निशानदेही करते हैं कि देखें ये चीज बढ़ रही है तो इससे ये इफेक्ट हो सकता है, ये AI आपको खुद बताता है, और उसके बाद मुतालिका महकमे कार्रवाई करते हैं और फिर देखा जाता है कि उस कार्रवाई का नतीजा क्या निकला, और इसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो मेरे ख्याल में बीजिंग से जो कुछ सीखा जा सकता है वो ये कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ आलूदगी नापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इसे फैसला साजी का हिस्सा बनाया गया। यानी जो नतीज सामने आ रहे हैं वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, और वो सब टेक्नोलॉजी की बदौलत है। पहले मसला तलाश किया जाता है, फिर उसका जरिया मालूम किया जाता है, और उसके बाद कार्रवाई होती है, और आखिर में नतीजे दोबारा डेटा से जांचे जाते हैं कि अच्छा ठीक है, जो प्रॉब्लम था हमने उसको इस तरह से हल किया है, अब उस हल का नतीजा क्या निकला है, उसके रिजल्ट्स क्या सामने आए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो सामने आई वो ये कि बीजिंग अकेला अपनी जो शहर की हवा है उसे साफ नहीं कर सकता, क्योंकि जो ताजा तरीन सरकारी तज्जिए हैं उनके मुताबिक शदीद आलूदगी के दिनों में जो इलाकाई मुंतकली है यानी एक इलाके से दूसरे इलाके तक पोल्यूशन का ट्रांसफर होना वो 80% तक पहुंच सकता है। तो बीजिंग की कामयाबी का जो अगला मरहला है वो सिर्फ शहर के अंदर नहीं बल्कि बीजिंग थियांजिन जो कि उसके साथ का इलाका लगता है और उसके आसपास के इलाकों के दरमियान मुश्तरका माहौलियाती इकदामात से अब जुड़ा हुआ है। 2025 में बीजिंग के तमाम 6 बड़े फजाई आलूदगी के इशारिये कौमी मयार पर तो पूरे उतरे। अब ये कामयाबी इस बात की मिसाल है कि किसी बड़े शहर की फजाई आलूदगी को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, और बीजिंग का ये तजुर्बा बताता है कि आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, मुसलसल निगरानी करनी है, साइंसी तहकीक का इस्तेमाल करना है, फिर इलाकों के दरमियान आपस में जो तआवुन है उसको रखना है, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक शहर से दूसरे शहर में आलूदगी ट्रांसफर ना हो, और फिर जदीद टेक्नोलॉजी का एक निजाम जिसको आप मरबूत करें वो जब सामने आता है तो फिर ये चीजें हासिल की जा सकती हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप कैसे AI को, कैसे टेक्नोलॉजीज को, कैसे सेंसर्स को इस्तेमाल करके चीजों को बेहतर कर सकते हैं। और आप शायद इस बात से इत्तेफाक करें कि कुछ अरसा पहले मेरा पाकिस्तान जाना हुआ तो मैंने ये देखा कि आज से 2 साल कबल जब मैं गया था तो वहां पर जो रोड सेंस है यानी आपने हिफाजती जो मयार हैं यानी बेल्ट आपने बांधनी है, किस लेन में गाड़ी चलानी है, इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन जैसे ही कैमराज लग गए और उसके बाद चालान जो है वो ई चालान आ गया, यानी आप से कोई बहस नहीं कर रहा, अगर आपने रूल्स की वॉयलेशन की है तो उसी वक्त आपको एक ई चालान आ जाएगा जो आपने भरना है, तो इन चीजों से इतना फर्क पड़ा कि अब वहां पर जो रोड सेफ्टी है आपकी अपनी वो बेहतर हो रही है, जो हिफाजत है वो लोग खुद ख्याल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको चालान न भरना पड़े। तो कानून की हुक्मरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सेंसर्स का होना, कैमरास का लगना, ये कितना इम्पोर्टेंट है इसकी मिसाल हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जिसमें लाहौर है, कराची है, इवन आपका हैदराबाद अगर हम बात करें, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, फिर मुल्तान है, मुजफ्फराबाद है, या हम इस्लामाबाद की बात करें या हम पिशावर की बात करें, इन तमाम जगहों पर जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके आलूदगी पर काबू पाया जाए, और इसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने बीजिंग की सामने आती है।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच एहतसाम, आज काफी दिनों बाद बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, और लास्ट में सुनने वालों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम?
0: पैगाम ये है कि जहां तक मुमकिन हो सके रूल्स को फॉलो करें, ये सोचना कि कोई नहीं देख रहा, मेरा ख्याल है कि हमारे अकीदे की भी तौहीन है, और फिर सिविल सोसाइटीज जितनी भी हैं जो अच्छे मुआशरे हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि आप रूल्स को फॉलो करें, अपना ख्याल रखें और फिर दूसरों का भी ख्याल रखें, तो ओवरऑल चीजें बेहतर होने लगती हैं। ये कह देना कि हम तो ऐसे मुल्क में हैं जहां कोई नहीं पूछता तो चलो खैर है कुछ भी कर लें, मेरा ख्याल है यही वो बुनियादी वजह है जो बिगाड़ का सबब है।
1: बिल्कुल जी, वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एहतसाम।
0: थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज जी। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको हमेशा की तरह सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसके तावन से आप ये सेगमेंट सुन रहे होते हैं, और एहतसाम आज हमारे साथ थे, और बहुत यूजफुल और अच्छी कॉन्वर्सेशन जो कि एहतसाम ने हम सबसे शेयर की। तो सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं, पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे, त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ाम मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा आवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03132525786।
6: जी हा, 2315-2576।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

राजस्थान से, अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, अमार रमेश कुमार खत्री हमें सुन रहे हैं, गोड चनेसर कराची से, और इसके अलावा जी रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रहे हैं। रेहाना खान थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जी और भी बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, तो हमें मैसेज कर दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, जिसमें से हमेशा की तरह शब्द बलोच के बहुत सारे मैसेजेस।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: ना इधर की और ना उधर की तो डगर न रहा मेरी
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ

0: वीह कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते ओटी, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-32-41-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: KG, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और लास्ट में वापस आ चुके हैं जी, लास्ट लेंगे हमारी तो इट मीन्स के लास्ट लकी कॉलर हमें लेना पड़ेगा 03000113488 लास्ट लकी कॉलर. हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम सर, दर्द क्या हाल चाल?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए.
0: जी मैं बहुत अच्छी, मुझे बताओ आज की अच्छी बात क्या है?
1: जी आज की अच्छी बात, अपनी छोटी छोटी गलती से बचने की कोशिश करो कि क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से टक्कर खाता है.
0: वेरी नाइस, क्या बात है,
1: क्या बात है, देखिए ना.
0: हाँ जी क्या बात है. अच्छा और कुछ कहना है सर दर्द?
1: हाँ और वो भूल गई, आप लखनी भाई मुझे सलाम देते उसे भी मेरे तरफ से. क्या
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज. ये थी लास्ट एंड लकी कॉलर सरदर्द और लास्ट एंड लकी कॉलर के बाद फाइनली हमारे जाने का वक्त भी हो चुका है. हम जाने की तरफ भी जाएंगे कि हमें जाना है. इसी के साथ हम लास्ट में मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा सा प्ले करके जाऊँ.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
6: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125257 86
4: जी हा 2315257 86
8: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिर्फ हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: फिर वो मुझे हाउस में भी मिलेगा, काबिल में मिलता। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से और उनको इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माची तरफ की जमहूरियत को हम तकमील दे सकें। तालीम दोनों हाथों में बचती है, अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन के बीहर गालन जी आज करे छी। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी काबिना के इजलास के खिताब कन्दे ताड़ियों बेनतन से वजंदी हैं। अग भी केतरा ही भेरा हाँ भी चवा तो अपोजिशन से गालन लाए तैयार आयू। अपोजिशन मामला गालन जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की जमहूरियती हथी मिली सके। जरिए मौजूद इजलास में पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिली वारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुकूमती अपील का जायजो वरतो वो। वफाकी काबिना डिफेंस फोर्सिस एक्ट 2002 नेशनल कमांड एक्ट 2010 में तरमीम की भी मंजूरी डिनी जी अज ही सेनेट ए कौमी असेंबली में मंजूरी लाए पेश कया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली वारे हुकूमती अपील वापस कर छी। जरिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्त पेपर बॉक्स मुकम्मल न होजन जो एतराज लगाए वापस कर छो। ब डी अग सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के इलाज अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुक्म दिनो हो जै बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते नजरसानी की अपील दाखिल कराई हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ गैर मामूली है ईरान के तबाही तरफ दिखींदड़ मुआशी जंग जो ऐलान। अमरीकी सदर है ईरान के मुहिदो करण जो मौको दिनो हो पर फायदो न वी सको। हाँ ईरान खिलाफ अड़ी तबाह कंदड़ मुआशी जंग तरफ वन पाया जका अग कें भी मुल्क खिलाफ न कई वही है। तेल के स्मगलिंग तेल बरदार जहाजन रकम की मुंतकिली करेंसी एक्सचेंज मरकजन के इस्तेमाल फर्जी कंपनियों के नाले से जहाजन के रजिस्ट्रेशन जड़ा मामला मुआशी जंग के निशाने से हूं। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत कार्रवाई जारी वधिक पंज दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद पंजगोर के इलाके पुलिस दौरान में गुजी इतला से ऑपरेशन कर पंज दहशतगर्दन के जहलुम भेड़ो कयो। उहे दहशतगर्द मकामी माण्हुनि खां फुरलुट भत्ते खोरी टारगेट किलिंग ए आपघाती हमलन में मुलविस हुआ। पेट्रोलियम वारे वजीर अली परवेज मलिक असांजी कोशिश से रिफाइनरी गाल मनीर डीजल की कीमत घटी वही है। आईएफएम माहिदे के डिसंदे पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी बनाने ताही जरूरी है। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाए भी जल्द मुहिदो तवानाई सेक्टर के डी रेगुलेशन से भी कम थी रो है।

0: मिनाज के भेटा पेश। जमायत इस्लामी जो पेट्रोलियम लेवी टैक्स ऐं महांगाई खिलाफ़ कराचीअ में गवर्नर हाउस ॿाहिरां पंज ॾींहं बि धरणो जारी। जमायत इस्लामी कराची जे अमीर मोनम ज़फ़र ख़ान चयो आहे त महांगाई के इलेक्ट्रॉनिक जे ज़ुल्मनि ऐं पेट्रोलियम लेवी ख़िलाफ़ आहे। पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते शहरनि ते धाड़ो हयो पियो वञे। मौजूदा सूरत हाल में पुरअमन सियासी मज़ामत जी ज़रूरत आहे। मसला अवामी जिदोजहद ज़रिए ई हल थी सघनि था। पिशावर खां कोयटा वेंदड़ जाफर एक्सप्रेस जेकमाबाद रेलवे स्टेशन वटि सिक्योरिटी क्लीयरेंस न मिलण सबबि रोकी वई। जेकमाबाद रेलवे स्टेशन इंतज़ामिया जो चवण आहे त बलोचिस्तान रेलवे इंतज़ामिया खां सिक्योरिटी क्लीयरेंस न मिलण सबबि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन खे रोकियो वियो आहे। रेलवे स्टेशन ते सहूलियतूं न हुजण सबबि मुसाफ़िर औरतूं, मासूम ॿार ऐं मर्द सख़्त परेशान आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
2: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ

0: शिफ़ा पानी सेहतमंद जिंदगी की ज़मानत
1: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहे है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
1: 6 लीटर पानी की बोतल बी पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रो है।
0: उनका अलावा असा रिफल की सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद है।
1: अवाजे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
0: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राबतो करियो। असां वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा।
1: 03125252786।
2: जी हा, 3315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
6: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फ्लोर हाउस में उन्होंने कहा, काबीना में भी कहा, आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से और उनको इन्वाइट करता हूँ कि उन्हें बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माची तरफ की जमहूरियत को हम तकमील दे सकें। तालीम दोनों हाथों में बचती है, अब उनके ऊपर ये नजर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
2: वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन के बीहर गालिन की आज कर छी। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी काबिना के इजलास के खिताब कन्दे ताड़ियों बिन हथन से वजंदियों अगवे केतरा ही भेरा हाँ भी चवं तो अपोजिशन से गालिन लाए तैयार आयो। अपोजिशन मामला गालिन जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की जमहूरियत हथी मिली सके। जरिए मौजूद इजलास में पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुकूमती अपील को जायजो वरतो वो। वफाकी काबिना डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 नेशनल कमांड एक्ट 2010 में तरमीम की भी मंजूरी डी जेके अज ही सेनेट ए कौमी असेंबली में मंजूरी लाए पेश कया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बारे हुकूमती अपील वापस कर छी। जरिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्त पेपर बॉक्स मुकम्मिल न होजन जो एतराज लगाए वापस कराए छी। जरियन मौजूद पीटीआई पारा बानी के अस्पताल मुंतकिल करण ते हुकूमत खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई लाए दरख्वास्त दाखिल करण की तैयारी मुकम्मिल। वही अग सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के इलाज अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुक्म दिनो हो जै बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते नजरसानी की अपील दाखिल कराई हुई। पाकिस्तान पहुतल शामी परदेही वजीर साद एहसन के नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात में बतरफी सहकार बढ़ाने ते गौर। परदेही ऑफिस मौजूद पाकिस्तान ए शाम विच में गड़े दिलचस्पी वारन शोबन में सहकार ते गाल बोल। शामी परदेही वजीर पारा पाकिस्तान ए शाम विच में फायरान लागापन के नसर ए पुख्ते बहाली जो अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत कार्रवाई जारी। पंज दहशतगर्द मार वाया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद पंजगोर के इलाके पुलिस सोरान में गुजी तलाते ऑपरेशन कर पंज दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो वो। उ दहशतगर्द मकामी मानून का फुर लुट भत्तेखोरी टारगेट किलिंग आपघाती हमलन में मुलविस हुआ। पेट्रोलियम वे वजीर अली परवेज मलिक है असाजी कोशिश से रिफाइनरी गाल मंझी डीजल की कीमत घटी वही है। IMF के मुहिदे के ऐसंदे पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी बनाने इंतहा जरूरी है। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाए भी जल्द मुहिदो तवानाई सेक्टर की डी रेगुलेशन से भी कम कर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ गैर मामूली ईरान के तबाह तरफ धिकींदड़ मुआशी जंग जो ऐलान। अमेरिकी सदर है ईरान के मुहिदो करण जो मौको दिनो हो पर फायदो न वी सको। हाँ ईरान खिलाफ अड़ी तबाह कंदड़ मुआशी जंग तरफ वनू पया जग कें भी मुल्क खिलाफ न कई वही है। तेल के स्मगलिंग तेल बरदार जहाजन रकम की मुंतकली करण से एक्सचेंज मर्कजन के इस्तेमाल फर्जी कंपनियों के नाले से जहाजन के रजिस्ट्रेशन जड़ा मामला मुआशी जंग के निशाने से हूं। शहीद पायलट राशिद मेनास के शहादत जो 55वां दिहाड़ो। ISPR जो चवण है राशिद मेनास 1971 के गैर मामूली सूरतयाल में शहीद राशिद मेनास पाकिस्तान की खुदमुख्तियारी ए इज्जत के तहफ़ुज लाए जान जो नजराना दिनो। सदर आसिफ अली ज़रदारी ए वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारा शहीद राशिद मेनास के भेटा पेश। सदर ए वज़ीर आज़म चयो त राशिद मेनास के वतन लाए बेमिसाल कुर्बानी सदाई याद रखी वेंदी। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पाक बहरिया ए पाक फिजाया के सरबराहन पारा भी शहीद राशिद

0: पिशावर खां कोटिया वींदड़ जाफर एक्सप्रेस जेकमाबाद रेलवे स्टेशन वट सिक्योरिटी क्लीयरेंस न मिलण सबब रोकी वई। जेकमाबाद रेलवे स्टेशन इंतजामिया जो चवण आहे त बलोचिस्तान रेलवे इंतजामिया खां सिक्योरिटी क्लीयरेंस न मिलण सबब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन खे रोके वियो आहे। रेलवे स्टेशन ते सहूलियतूं न हुजण सबब मुसाफ़िर औरतूं, मासूम ॿार ऐं मर्द सख़्त परेशान आहिनि। कराची जे एंटी नार्कोटेक्स अनमोल उर्फिंकी ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ मंशियात केस जी ॿुधणी अनमोल उर्फिंकी वीडियो लिंक ज़रिए अदालत में पेश। संदसि भाउ मोहम्मद नासिर ऐं जवाबदार नसीम बीबी जे ग़ैर हाज़िरीअ ते अदालत पारां कावड़ जो इज़हार। अदालत पारां ॿिन्ही जवाबदारनि जा ज़मानत न थियण जोॻा गिरफ़्तारी वारंट जारी। मोहम्मद नासिर ऐं नसीम बीबीअ खे गिरफ़्तार करे अदालत में पेश करण जो हुकुम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या लाइफ की ट्रेजेडी।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग

0: वाटर एथमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
0: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रयो आहे
1: उनका अलावा असा वट रिफिल जी सहूलत पिन सस्ते अगते मौजूद आहे
0: अवां जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ए बिन तकरीबन लाए हाणी असा सा राबतो करियो असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी की सर्विस पिन मौजूद आहे वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 0371800-3920
0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576
2: जी हा 2315525786
0: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए 2347-3141-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
6: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: मैंने कहा काबिल ने भी कहा, आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि बहुमकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑफिसन को इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माची तरफ की जमहूरियत को हम तकमील दे सकें। तालीम दोनों हाथों में बचती है, अब उनके ऊपर ये मसला है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के बीहर गालन जी आज करे शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़ाक़ी काबिना के इजलास के खिताब कंदे चयो त ताड़ियूं ॿिनि हथनि सां वॼंदियूं आहिनि। अॻु बि केतिरा ई भेरा चयो ऐं हाणे बि चवां थो त अपोज़िशन सां ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं। अपोज़िशन मामला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करे त जीअं मुआशी तरक़ी ऐं जमहूरियत खे अती मिली सघे। ज़रियनि मौजूदु इजलास में पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली वारे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले हुकूमती अपील जो जाइज़ो वरितो वियो। वफ़ाक़ी काबिनेट डिफेंस फोर्सिस एक्ट 2026 ऐं नेशनल कमांड एक्ट 2010 में तरमीम जी बि मंज़ूरी ॾिनी, जेके अॼु ई सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली में मंज़ूरीअ लाइ पेश कया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली वारे हुकूमती अपील वापस करे छॾी। ज़रियनि मूजिबि सुप्रीम कोर्ट जे रजिस्ट्रार आफ़ीस हुकूमती नज़रसानीअ जे दरख़्वास्त पेपर बॉक्स मुकमिल न हुजण जो एतिराज़ लॻाए वापसि कराए छॾी। ज़रियनि मूजिबि पीटीआई पारां बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जी कार्रवाई लाइ दरख़्वास्त दाख़िल करण जी तयारी मुकमिल। ॿ ॾींहं अॻु सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी खे इलाज अलशिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम ॾिनो हो, जंहिं बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते नज़रसानीअ जी अपील दाख़िल कराई हुई। पाकिस्तान पहुतल शामी परडे॒ही वज़ीर अहसन जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सां मुलाक़ात में बतरफ़ी सहकार वधाइण ते ग़ौर। परडे॒ही आफ़ीस मूजिबि पाकिस्तान ऐं शाम विच में गॾियल दिलचस्पी वारनि शोबनि में सहकार ते ॻाल्हि ॿोल। शामी परडे॒ही वज़ीर पारां पाकिस्तान ऐं शाम विच में भाइरनि लाॻापनि जे नए सिर ऐं पुख़्ते बहालीअ जो अज़म। पाकिस्तान पहुतल मलेशिया जे घरू वज़ीर सैफुल्लाह इस्माइल जो पाकिस्तान मूवमेंट ऐं इस्लामाबाद पुलिस लायर्स जो दौरो खेस गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो वियो। घरू मामलनि जो मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी मलेशियन वज़ीर सां मौजूदु घरू वज़ीर सैफुल्दीन शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी भरे फातिहा ख़्वाहिंदी कई। मलेशिया जे घरू वज़ीर पारां इस्लामाबाद पुलिस जे जवाननि जे पेशावराणी सलाहियतनि जी वाखाण। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितरा टे तहत कार्रवाइयूं जारी। वधीक 5 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मौजूदु पंजगोर जे इलाइक़े पुलिस सोरहां में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन करे 5 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो आहे। दहशतगर्द मकामी माण्हुनि खां फुरलुट भतेखोरी टारगेट किलिंग ऐं आपघाती हमलनि में मुलविस हुआ। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त असांजी कोशिश सां रिफाइनरी ॻाल्हि मञी डीज़ल जी क़ीमत घटी वई आहे। IFM जे मुआहिदे खे ॾिसंदे पाकिस्तान जी तवानाई सिक्योरिटी बढ़ाइण इंतिहाई ज़रूरी आहे। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाइ बि जल्द मुआहिदो थींदो। तवानाई सेक्टर जी रेगुलेशन ते बि कम थी रहियो आहे।

0: शहादत जो पंजवंजाहो ॾियारो आहे। एस पी आर जो चवणु आहे त राशिद मेनास 1971 जे ग़ैर मामूली सूरतहाल में शहीद।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़ीनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे।

0: पहले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 03125252786
1: जी हा 2315525786
0: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंधी नेशनलिस्ट और टीटीपी उनका नेक्सस बन रहा है और हमला करना चाहते हैं आप कराची में या बलूचिस्तान में, तो वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके और बैठे कहां है? इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पाकिस्तान को कामयाब देखना चाहता हूं।
1: मैं समझता हूं कि मुझसे शायद लफ्जों पर गलत चुनाव हुआ है, अलहदगी के परास्त होते हैं और वो भी जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था।
2: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी पारां गुजरियल ॾींहुं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग़लति लफ़्ज़नि जी चूंड जो एतिराफ़। बिलाल भुट्टो जरदारी खां साफ़ी सवाल कयो त छा अवा क़ौम परस्त धुरियुनि खे मुल्क जे ख़िलाफ़ था समझो। बिलाल भुट्टो जरदारी चयो त गुज़िरियल ॾींहुं मूंखां लफ़्ज़नि जी चूंड में ग़लती थी, मुंहिंजे चवण जो मक़सदु हो त तशदुद जो रस्तो अख़्तियार कंदड़ अलहदगी पसंद दहशतगर्दीअ में मुलविस आहिनि। उन्हनि तंज़ीमनि जे सहूलतकारी पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान मां थी रही आहे। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई वानी जी अस्पताल मुंतकली वारी हुकूमती अपील एतराज़ लगाए वापस करे छॾी। सरियन मौजूद सुप्रीम कोर्ट जे रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमती नज़रसानी जी दरख़्वास्त बि पेपर बुक्स मुकमल न हुजण जो एतराज़ लगाए वापस कराए छॾिया। सरियन मौजूद पीटीआई पारां वानी खे अस्पताल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तोहीन अदालत जी कार्रवाई लाइ दरख़्वास्त दाख़िल करण जी तयारी मुकमल। सुप्रीम कोर्ट ॿिनि ॾींहनि अंदरि पीटीआई वानी खे अस्पताल मुंतकिल करण जो हुकुम ॾिनो हो।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ।

0: बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125-25786।
3: जी हा, 2311-25-25786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरियाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरियाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अक्सर माण्हू जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कौमी असेंबलीअ खां पोइ सेनेट में बि डिफेंस फोर्स एक्ट 2026 ऐं नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 तरमीमी बिल मंज़ूर। क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में तरमीमी बिल इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर कया विया। डिफेंस फोर्सिस एक्ट तहत दिफ़ाई फ़ौज जो हिकु हेडक्वार्टर क़ाइमु कयो वेंदो। हेडक्वार्टर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जी कमान ऐं अख़्तियारनि तहत ज़िमेवारियूं अदा कंदो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस खे हथियारबंद फ़ौज जे अमले, कमांड ऐं कंट्रोल जो अख़्तियार बि हासिल हूंदो। कमांड एंड कंट्रोल जे ज़मन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वफ़ाक़ी हुकूमत आॾो जवाबदाह हूंदो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आइन जे आर्टिकल 243 तहत कंहिंखे बि मुक़ररु, रिटायर्ड या बरतरफ़ करे सघंदो। इस्तीफ़ा मंज़ूर या रद्द करण समेत मुलाज़मत खे बरक़रार रखण जो बि अख़्तियार वठसि हूंदो। एक्ट में दरपेश कंहिं बि मसइले जो सदर पाकिस्तान अज़ालो करे सघंदो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 03125-25786
1: जी हा 2311-25-25786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन दरे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जितरा भी बार आयन उनन के ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगान लाजमी आए।
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
2: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: 太 low。
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: शिपा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण जा इम्कान। पीटीआई बानी की मुंतकली वाले मामले ते मुशावरत लाए वजीर आजम शहबाज शरीफ सा घरू वजीर मोहसिन नकवी की मुलाकात। जरियन मूजिब पीटीआई बानी के अज अडियाला जेल का अस्पताल मुंतकिल करण लाए इंतजाम मुकम्मल कया व्या हैं। कानून वारे वजीर आजम नजीर तारण जो चवण है त पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेवारी है। रात 12 बजे तक जो वक्त है, डिस जे छा थो थे।

0: फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि बहुमकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑफिसन को इन्वाइट करता हूँ कि उन्हें बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माटी तरफ की जमूरत को हम तकमील दे सकें। तालीम दोनों हाथों में बचती है, अब उनके ऊपर ये मुसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंसेप्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के बीहर गालियों की आछ करे छी। वफाकी काबीना के इजलास के खिताब कंदे वज़ीर आज़म चयो तो ताड़ी बिन हथन से वजंदी है, अग भी चयो हाने भी चवान तो अपोजिशन से गालियों लाए तैयार आयो। अपोजिशन मामला गालियों जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की जमहूरियत के हथी मिली सके।

0: आरसीसी घरन जो पकियूं छिटू लगरा लाए खुश खबरी छा चाहियो था अवां जे घरन जो छिटू पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
0: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल तो असा के पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तवा के वैक्सीन जे लाए उम्र की हद कोने कैं जगह वैक्सीन कैं उम्र के पोलियो लगी सके तो कैं उम्र के वैक्सीन कर सके पर रेशो वधी क 10 साल के घट आ तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सभी के बूस्टर डोज लगराए।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघु ते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252578 6
3: जी हाँ 2315525786
7: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सीएम हाउस ताई मार्च PIDC अगियां धरनो हो वयो मसलन जे हल लाए गडल कमेटी जोड़न वर सूबाई वजीरन जी खातरी ते इत्तेजाज खत्म। सेव सिंध लायर्स फॉर्म कमेटी जे सद ते वकीलन जी मार्च दौरान इंतजामिया कंटेनर्स लगाए रस्ता बंद करे छड्या। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह मेयर कराची मुर्तजा वहाब धरने वाले हंध पहुंची वकीलन सां गालियूं करे धरनो खत्म करायो। नासिर हुसैन शाह चयो त अॼुकल्ह वापारी बि निकिरी पिया आहिनि त 36 सूबा ठाहियो 32 सूबा ठाहियो पर पीपुल्स पार्टीअ जो सूबनि जे हवाले सां मौक़िफ़ वाज़े आहे। जिन असेंबलियुनि ठहराउ मंज़ूर कया आहिनि भली हुते 9 सूबा ठाहिया वञनि, सिंध असेंबली सूबनि जे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। वकील अॻवाननि मुतालबो कयो त सिंध असेंबलीअ मां हिकु भेरो ॿीहर सिंध जी वहदानियत बाबति ठहराउ मंज़ूर कराइण समेत गुम थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ जुडिशियल कमीशन जोड़ी वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
3: हा गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
3: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786
3: जी हाँ 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐ बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3141-200।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: पीटीआई बानी के अजी अडियाला जेल में शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का इम्कान। पीटीआई बानी की मुंतकिली वाले मामले से मुशावरत लाए वजीर आजम शहबाज शरीफ से घरू वजीर मोहसिन नकवी की मुलाकात। जरियन मूजिब पीटीआई बानी के अजी अडियाला जेल का अस्पताल मुंतकिल करने लाए इंतजाम मुकम्मल किया गया है। सेक्रेटरी भी सख्त आजम नजीर तारण जो चवण हो तो पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेवारी है। रात 12 वगे ताई जो वक्त है दिसजे छा तो थे।
1: आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं कर इस फोरम से और उनको इन्वाइट करता हूँ कि आए बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माची तरक्की जमहूरियत को हम तकमील दे सकें। तालीम दोनों हाथ में बचती है, अब उनके ऊपर ये मुसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
2: वज़ीर आज़म अपोजिशन के बेहद गालियन की आछ करे थरी वफाकी काबीना के इजलास के खिताब कदे शहबाज शरीफ चयो त ताड़ी बिन हथन से वजंदी है। अग भी चयो ए हाणे भी चवा तो अपोजिशन से गालियन लाए तैयार आयो। अपोजिशन मामला गालियन जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की ए जमहूरियत के हथी मिली सके।

0: सर्विस एमडी खां पोइ सेनेट में बि डिफेंस फोर्सिस एक्ट 2026 ऐं नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 तरमीमी बिल मंज़ूर। क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में तरमीमी बिल इतफ़ाक़ जे राय सां मंज़ूर कया विया। डिफेंस फोर्सिस एक्ट तहत दिफ़ाई फ़ौज जो हिकु हेडक्वार्टर क़ाइमु कयो वेंदो। हेडक्वार्टर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस जी कमान ऐं अख़्तियारनि तहत ज़िमेवारियूं अदा कंदो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस खे हथियारबंद फ़ौज जे अमले कमांड ऐं कंट्रोल जो अख़्तियार बि हासिल हूंदो। कमांड एंड कंट्रोल जे ज़िमन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस वफ़ाक़ी हुकूमत ॾाढो जवाबदेह हूंदो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस आइन जे आर्टिकल 243 तहत कंहिंखे बि मुक़ररु, रिटायर्ड या बरतरफ़ करे सघंदो। इस्तीफ़ा मंज़ूर या रद्द करण समेत मुलाज़मत खे बरक़रार रखण जो अख़्तियार बि वटसि हूंदो। एक्ट में दरपेश कंहिं बि मसइले जो सदर पाकिस्तान अज़ालो करे सघंदो।
1: पाकिस्तान पहुतल शामी परडे॒ही वज़ीर साद हसन जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाकात, बेतरफ़ो सहकार वधाइण ते ॻाल्हियूं। परडे॒ही आफ़ीस मूजिबि पाकिस्तान ऐं शाम विच में गडि॒यल दिलचस्पी वारनि शोबनि में सहकार ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। शामी परडे॒ही वज़ीर पारां बि॒न्ही मुल्कनि विच में भाइराणनि लाॻापनि खे वधीक पुख़्तो करण जो अज़म।

0: संजय सीनियर वजीर पारा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड।

0: फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा।
3: 03125252786।
4: जी हा, 231-25-25-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजरसानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला।

0: यहाँ डालते हैं, हम सिरहाने रख के ख्वाब रातें जागते हैं, हम तुम्हें तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं।
1: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमान उल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।